दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

0: Times FM 90.6
1: यो हो संगीत लहर सदाबहार हिंदी गीत संगीत को नॉनस्टॉप म्यूजिकल ब्रेक संगीत

तालियों के शोर में एक गुमसुम खामोशी भी थी, एक ऐसी खामोशी जो घटाओं के बरसने से पहले सुनाई देती है।

0: क्या मैं उसी इंस्पेक्टर को देख रहा हूँ जो कल तक हमारी फोर्स का सबसे बेहतरीन ऑफिसर था?
1: हाँ सर, सही कहते हैं। जो कल तक युद्ध जीतने का दावा करता था, वो आज जिंदगी के युद्ध में हार गया है सर,
2: हार गया है।